हार्दिक आमन्त्रण। यही जेठ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म दैनिक रूपमा बिहान 4:30 बिहान 6:30 पतञ्जलि योगपीठ नेपालकी प्रथम सन्यासी आदरणीय गुरु पूज्य साधवी श्री देवकृपाज्यूबाट योग कक्षा सञ्चालन हुने हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। बृहत योग विज्ञान शिविर उद्घाटन हुने दिन यही जेठ 24 गते, समय बिहान 4:30 बिहान 6:30। स्थान ठाकुरबाबा नगरपालिका 7 कानपुर स्थित खेल मैदान मोहनपुर बर्दिया।

0: बिहान 6:30 पतञ्जलि योगपीठ नेपालकी प्रथम सन्यासी आदरणीय गुरु पूज्य साधवी श्री देवकृपा ज्यूबाट योग कक्षा सञ्चालन हुने हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौ। वृहत योग विज्ञान शिविर उद्घाटन हुने दिन यही जेठ 24 गते समय बिहान 4:30 बिहान 6:30 स्थान ठाकुरबाबा नगरपालिका 7 कानपुर स्थित खेल मैदान मोहनपुर बर्दिया।
1: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़ वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया।